घुमघाम राई मजाम साथी धुमधाम राई सपन नयाँ इबी मेरो दिया इबीसँग लाइफ छ सुपरफन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the

जाम साथी धुमधाम राइड सफन नयाँ इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइफ छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe.

0: कदम।
1: किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा,
2: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा
0: के धूप में खिला है चांद

0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा
1: कहा कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला चांद दिन में रात हो गई
1: चांद की